जय जय अजन्तत प्रतिवेदिं तुष्णिमश्नान् सुरेश्वरा ततो वैकुण्ठ।

0: मोरे जिया राम चमके, अरे थम थम कोई बिझुरिया।
1: वाह वाह वाह, तोहार जवाब नाही

मेहरबानी। दोस्तों, जिंदगी हसीन है मगर सिर्फ उनके लिए जिन्होंने प्यार किया है, क्योंकि सिर्फ प्यार करने वाले जानते हैं कि आन बान और शान से जीना किसे कहते हैं, है ना।

0: We are your nightly musical companion, Radio Jagwiti 102.7 FM.
1: Hey, my friends, Ricky Ramlagan here, inviting you to join me on the musical journey to the Midnight Hour every Tuesday to Friday from 4 to midnight. Your Sundar Sapna on Radio Jagwiti 102.7 FM, where I bring you the passion of beautiful, breathtaking, specially selected music and the warmth of great company. The music you know, the music you love, the music you want to listen to on your Sundar Sapna. Your enchanted journey to beautiful dreams.
2: प्रेम से बोले श्री कृष्ण भगवान की जय सीताराम आई एम पंडित शिवानंद राधे महाराज आस्किंग यू द व्यूअर्स एंड द लिसनर्स ऑफ रेडियो एंड टीवी जागृति टू जॉइन अस एवरी वेंसडे फ्रॉम 5 टू 6 पीएम वेयर वी स्पीक अबाउट द ग्लोरीज ऑफ श्री कृष्ण भगवान ऑन आवर प्रोग्राम कृष्ण अर्पणम बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय
3: योर हेल्थ योर वेल्थ द नंबर वन हेल्थ प्रोग्राम जॉइन अस ऑन रेडियो एंड टीवी जागृति as we continue to discuss interesting and informative topics to improve the health status of our country. The date, Tuesday, 5 p.m., right here on your number one Hindu station, Radio and TV Jagriti, Sitaram.

0: soft, sentimental, and soothing music on Radio Jagwachi 102.7 FM.
1: आईना देख के बोले ये संवरने वाले अब तो बेमौत मरेंगे मेरे मरने वाले।

0: 102.7 FM, आपका धर्म आपका स्टेशन रेडियो जागृति
1: भागवत एंड सन्स ज्वेलर्स ऑफ 68 मेन रोड शगोनस ऑपोजिट द शगोनस मार्केट कॉल देम एट 6654103 फॉर ऑल योर गोल्ड सिल्वर डायमंड्स एंड प्रेशियस स्टोन्स वेडिंग रिंग्स इयररिंग्स पेंडेंट्स एंड ट्रेडिशनल फिलिग्री आइटम कस्टम मेड ज्वेलरी पेरा स्पेशलिस्ट एंड ब्रांड नेम पेन्स फ्री एनग्रेविंग ऑन ऑल आइटम्स परचेस्ड फोर जनरेशन सर्विंग द कम्युनिटी विद इंटेग्रिटी एंड प्राइड भागवत एंड सन्स ज्वेलर्स Check us out on Facebook at R. Bhagwat and Sons Jewelers and on Instagram.
2: Looking for something truly unique this season? Then you need to visit Fab India Expo, located opposite Medford.

0: यहाँ दाल में कुछ काला है।
1: काला?
2: तुम्हारे ख्याल में ये कौन गा रहा है?
0: अरे ये तो मेरा भोला है, वो देख सामने खड़ा।
2: नहीं नहीं, ये तो विद्यापति है।
0: विद्यापति? कौन विद्यापति?
2: मैं इसे जानती हूँ, ये बहुत बड़ा कवैया है।
0: I don't believe it, it's impossible. You have to believe it. चलो मेरे साथ।

0: तो जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, रूप महल प्रेम गली खोली नंबर 420।
1: एक्सक्यूज मी प्लीज, माय नेम इज एंथनी गोंसाल्विस।

सूर्याय नमः, आदित्याय नमः। श्रोताओ, भगवान सूर्य जिन्हें आदित्य नाम से शास्त्रों में जाना जाता है, वे इस सृष्टि के साक्षात देवता हैं जिनका प्राणी प्रतिदिन दर्शन करता है। आइए भगवान सूर्य नारायण के चरणों में नमन करते हुए उनका गुणगान करें।